हर का दास नीच कुल सुने तिसके संग खिन मैं उदरै कोट भजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुरते विद जानी मन अपने मैं फिर प्रचेत बिंस जाए माया के हेत हरे बनासी तुमरे संग मन मेरे रच राम कह रंग जाके काम उतरे सा पूक जाके काम न जो है दूत जाके काम तेरा बड़ गमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं डान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करोप सिखा जाके ऊना ही कहूँ बात एक है आप अनेक है पात जाकी दिस हो सदा।

श्री नाय हरपुर पंडारिया चौदस जपिए नाम सुख सवारिया मैं आई ओट तुहार नानक बलिहारिया गुर का ड्यो पूजा पसार मोख पारिया मैं जीतो जन्म पार बोर नहारिया मैं पायो सर्व निधान अकथ कथारिया अधर गए सो बाबंत भान लुडारिया जय नानक लद्दा रतन अमूल अपारिया गुर सेवा पौजो तरिया कहो पुकारिया गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो चप जेवा हर एक मंगो रहाओ तज हो मैं गुर ज्ञान भजो मिल संग तुर कर्म लिखियो जो दिशे सत्संग न गयो साकत मूल लगे पच मोयो मोह नाम सदा रव रहो कोट मदे किने गुरमुख लहो हर संतन कर नमो नमो नौ निध पावे।

जल तो तो क्या गुरु चंदन शीतलायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुरु ज्ञान दिपायो पाप सागर गहरो चर्च संत नाप तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभु गह पूजा पायो भोखंडन दुख पंजनो भगत बशल हर नायो अनाथे ना कृपाल दीन समर्थ संत उठायो निर्गुणियारे की बेनती देहो दर्श हर रायो नानक सर तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिख्या के भोगा इन संग आंध ना जानी हो सचो हो खटता सगली अवद बिहानी रहाओ हो सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जोवन बंत आचार कुलीना मन में हुए गुमानी ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मत्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंधम सखे पाछे तिनू को संपानी जित लागो मन बासना अंसाई प्रगटानी अहम बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंधानी दयाल पुरख करो नानक दास दसानी जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राग गौड़ी।

पारे। नानक सच मिली सुहागण गुर कहित पारे। आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे। कामण बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे। सच शब्द सिगारे हमें मारे गुरमुखा सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई बुझे गुर विचारे। मन मुकाम व्यापी मोहि संतापी किस्या।

बिन पानी डूमुए बिन पानी गत नहीं जानी हमें तात संसारे जो गुर आया सो सब को जासी उभरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम बखाने आप तरे कुतारे नानक नाम बसे करे अंतर गुरु मिले प्यारे राम नाम बिन कोथ नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम बपारा राम नाम बपारा अगम पारा गुरमति तन पाइया सेवा सुरत भगत ए साची विचों आप गवाई है हम मतहीन मूर्ख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नान गुरमुख शब्द सुहावे अंधे हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए आपे गुणदाता या गुण काटे हृदय ना बसाए नानक सत बलिहारी सच्चे विटो आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिरा जियो हर नाम ते आए मंजो दूर ना जाए पिरा जियो कर बैठे हर पाए कर बैठे हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सभाए गुर की सेवा करी सिखाले जिसनु आप कराए नामो बीजे नामो जमे नामो मन बसाए नानक सच नाम बड़ियाए पूर्व लिखिया पाए हर का नाम मीठा पिरा जियो जस चाखा चित लाए रसना हरस चाख मोहे जियो अनरस साज गवाए सदा हर्ष पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए नाम त्याय सदा सुख पाए नाम

हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचे, सा छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्थिर कर्माने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए तिसका शर्म करें, संग सहाय तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे तुए, गर्ता प्रीत पसम संग हुए। आंध कूब मैं तित बिकराल, नाने काट ले हो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जाते, लोक पचारा करे दिन राते। बाहर पेखे अंतर मल माया, शब्द नहीं कुछ।

जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्ब थोके नानक तिन पाया अगनत साहू अपने ते रासे खात पीत बरते आनंद उलासे अपने माने कछ बाहर साहू ले

पर ब्रह्म सब जाने अपना की आए आपे माने आपे है आप आप करत नबेड़ा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाओ सियानप सगल ते रहते सब किस जाने आत्म की रहते जिस पावे तिस लय लड़ लाई थान थनांतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाई अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव अष्टपदी जे प्रसाद सती अमृत खाहि तिस ठाकर को रख मन माहि जे प्रसाद सगंतन लावे तिसको सिमरत परम

आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे पर सातु चार बिहारी, तिस प्रभ को सासा चितारी, जे पर सा तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जे पर सा तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पतर है, गुर प्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुने करनाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद सपूरन फल है, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे,

नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीन आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीन ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मया ब्रह्म ज्ञानी तो कुछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिष्ट अमृत बरसी।

ब्रह्म ज्ञानी कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी क्या हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सगल

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुरी, ब्रह्म ज्ञानी किमित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारे, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कारे। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ।

आई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर आई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाई।

दुहत जिते उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रन खाता दे आहि तुहत तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुहत हुए मरे।

वै सुनय मूढ़ चितलाय चतुर्ताया वै दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहे हो जो जा की एक बार चौपई को कह चौपई संबद सतरह सहस पनि जय अर्ध सहस फुण तीन कह जय भाद्रव सदी अष्टमी रवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्यान तिरे चरित्रे मंत्री भूप संवादे

प्रसाद आनंद पहा मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हरि कृष्ण त्याई आय, जिह जिठे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय।

पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसादान, धाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौकिया झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा, मत उची मत पात दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधयावें ताए, सब थाई हुए सहाय।

ते वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: हाय गुरु हाय
1: गुरु
0: हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

मन जीवै प्रभ नाम चितेरे, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी।

गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाओ अपार। आख है मंग है देहे देहे, दात करे दातार, फेर के अग्गै रखिया जित दिसै दरबार। मोहा के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिया सब आपे सचियार। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हाउ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण भाणे के नाए करी। जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे इक गुर की सिख सुनी। गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया ईसर बर्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद। सुनया जोग जुगत तन भेद, सुनया शास्त सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया अठ सठ का इसनान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सरा गुणा के गाह, सुनया सेख पीर पात साह, सुनया अंधे पाव है राह, सुनया हाथ होवै असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछै पछताए, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मन्नै मुह चोटा ना खाए, मन्नै जमकै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाना मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यो प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाना मन कोए।
मन्नै पावै मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुरसिख, मन्नै नानक भवै न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरग है मान, पंचे सो है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करै विचार, करते कह करना नाहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिसते पार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाणै कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवालिहो रूप, केती दात जाणै कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पखसार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह है सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुर माए तिव तिव पाहे।

अंत न पाए जाहे, एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरे करमी दात, बहुता कर्म लिख्या ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगह जोध अपार, केते आ गणत नहीं विचार, केते खाप तुट है बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केते आ दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाण होए, होर आख ना सकै कोए,

अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओह वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एकावार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बौ लख हो हे लख हो वह लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस। ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइया कूड़ी कूड़ा ठीस। आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मनसोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत।

आद अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते हैं, अपे हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रमान हैं, निदान हैं, त्रवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अबर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने।

अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासे सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासे चर्पण छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले।

चक्कर बक्कर फेरा चत्तर चक, मन ही पुरतीन लोक चौधे के बिखै, जग जापई जह जाप, आद देव अनाद मूरत, थाप्यो सबै जह थाप। परम रूप पनीत मूरत, पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचयो स्वयं भव, गणन भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त, अकाल पुरख अदेस, धर्म ताम सो परम रहत, अभूत अलख अपेस। अंग राग नारंग जा कह जात पातना नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन, मुक्त दायक काम। आप रूप अमीक अन उस्तत, एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन, आद रूप असूत। अंगहीन अपंग अनात्म, एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक, सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता, सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र ना जा नहीं, जह रूप रंग अररेख। परम वेद पुराण जा कह नेथ भाखत नित, कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वह चित, माध पार छंद त्व प्रसाद। गुणगन उदार महिमा अपार, आसन अपंग उपमा अनंग, अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास, आजान बाहो

काल अनुपूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंड अंड बाढ़।

स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवरघं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद तो प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न जात न तात न मात न जात न पात निरसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजा है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनिमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हरासल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजाय करहीम है समस्तल जुबा है के साहिब करा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तल अजीज है परं परम ईस है समस्तल अदीस है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के अमितो अपंग है मद पार छंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहो एकै सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछ जगात आजिजना बात अनचन जगात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है अजबा कृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद
नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो

सबै सुब चार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत ए करती बिन एक ना लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबिचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र राधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे

नात फिरियो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐस सो बैस बतायो, साच कहो सुन लिहो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवा

करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याहूं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रासन वरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करिहो रच्छा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिट्टी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्पकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेवना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत।

ते तुमरा लखा ना जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरे श्रेष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त होवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल का एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरे सट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध करमो सब होए दुष्ट छह छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विख सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन कौ छह करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

सुनै मूड़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो।

ठाकर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखण जाए सब दिन सरैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक उपाव करी गुर कारण

विस्तार सहित जो पवित्र शब्द है इस नूं सूही राग विच गायन करना है। मन मर्जी नहीं करनी और अष्टपदिया अठा पदिया वाले शब्द महला चौथा चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी की रचना तो उचारण किया। घर दूजा जिहड़ा है वह भी संगीत नाल ही संबंधित है। जो ताल है वो दूजे घर का इस दे नाल बजाया जाएगा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिखां दा जो रब है वो एक है, वो दो जां तीन नहीं। शामी मतां विच यहूदियां विच इस्लाम विच क्रिश्चनैलिटी विच वो एक खुदा दी गल ते करदे ने, पर उस एक खुदा दे पैरलर एक होर ताकत नूं वो समझदे ने भी भगवान ते है, पर भगवान दे मुकाबले ते एक शैतान है जिहड़ा मनुखी मन नूं बदियां वाले पासे प्रेरित करदा है। उहनां दा इह मनना है भई इह शैतान भी बड़ा ताकतवर हुंदा है। जे वैदिक मतां दी गल करिए ते उहनां दे तीन देवते ने ब्रह्मा विष्णु ते महेश। एक संसार नूं पैदा करदा है, एक रिजक देंदा है ते एक संघार करदा है। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, ये उन्हां दा मत है। पर गुरमत दा मत है जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान। इन्हां दी अपनी कोई मर्जी नहीं, इन्हां सारिआं दे उत्ते एक अकाल पुरख दा कुंडा है जिस नूं गुरमत कहिंदी है। एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। एक ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, एक रस है लगातार है। भाव सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, क्योंकि ओ अविनाशी पुरख है सब मैं रहा समाए। ओ जिहड़ा एक ओंकार है वह प्राप्त हुंदा है सतगुर प्रसाद, वो गुरु दी कृपा नाल प्राप्त हुंदा है, गुरु द्वारा प्राप्त हुंदा है। शब्द दे आरंभक

हे दातार ए जड़ी तू भुख देना है ए जड़े तू दुख देना है ये भी साढ़े भले वास्ते देना है। कदी कदी बहुत ज्यादा सुखा विच गाफल हो के मनुख जीवन का प्रयोजन भुल जाता है ते फिर तुसी दुखां दी चौंबड़ ला के सानू माया दी गाफलता विच सुत्या प्यानू जगाण दा पर उपकार कर दे। इसलिए दुख भी तुझे ध्याई

मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा काज सब सवारना, सबना गल्ला सबरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब पिछै जिस दे सो पावे, सदा शिव सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजी शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन ऐ वसिया, जिन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी धार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जप

मोहे उधारो सुखमनी सोखे अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कस बिगल ना लागे प्रभ कै सिमरन आनंद न जागे प्रभ कै सिमरन पहो ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन

दासंदसना प्रभुकौ सिमरह से तनवंते प्रभुकौ सिमरह से पतवंते प्रभुकौ सिमरह से जन प्रवान प्रभुकौ सिमरह से पुरुख प्रधान

भरत बरख है भगत जना की बरतन नाम संतना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम दुरै जन कोट।

प्रभु दीना। हर हर जन कहे ओट स्थानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसे, संत प्रताप दुरत सब नसे। संत का संग वड भागी पाई, संत की सेवा नाम त्याई है। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे। जन को सलोक बहु साहत्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब डढोल पूज सनाही। हर हरे नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। खड़ साहत्र सिमृत बखियान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना। पुन दान होमे बहु रतना,

भोजन सुख सूद बिरद भयाहु प्रसाग सैन मुख प्याहु बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु ना बूझै बख्स ले हो तौ नानक सीजै जेह प्रसाद धारु पर सुख बस है सुत प्रात मीत बनता संग हस है जेह प्रसाद पीवह सीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमुला जेह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साध बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना

अंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तर संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बरुआ के गृह पीतर बसे अंध केल माया रंग रसे दृढ़कार माने मणे परतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म

मिथ्यामान पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तण पार पुकार, मिथ्या बाह लेद विकार, बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देहे, नानक हर हर नाम लय, वृत्ति सागत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा, वृथा नाम बिना तने अंद मुख आमत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रहन वृथा विहाय, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम, तन धन ते जन जेह घट बस्यो, हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ, रह तबर कछबर कमावत, मन ही प्रीत मुखों गण लावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू पीन, अपर उपदेस आप ना करे आवत जावत, जन मैं मरै

आवे। सत्संग बहत गोचर लह साधु कै संग अजर सह साधक संग बसे थान ऊचे साधु कै संग महल पहुचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साधक संग सब कुल उधारे सत्संग साजन मीत कुटम निस्तारे साधु कै संग सोतन पावे जिस धन ते सब को रसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाव पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वस्थान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेड़त होत निहाल साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे।

संयोग साधक में मां वेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साधक पमा देह गुण ते दूर साधक पमा रही पार पूर साधक शोभा का नाही अंत साधक शोभा सदा बेअंत साधक शोभा उचते उची साधक शोभा मूच ते मूची साधक शोभा।

कासाई सुपाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगाह जैसे तारी ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र

ते काशी बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी के दृहत अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ते आन।

ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कै रंग ब्रह्मज्ञानी कै बसे प्रभ संग ब्रह्मज्ञानी कै नाम धार ब्रह्मज्ञानी कै नाम परिवार ब्रह्मज्ञानी सदा सब जागत ब्रह्मज्ञानी अबुद्ध आगत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी करहि विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता ब्रह्मज्ञानी कै होय अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जस

जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाख्यर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कामतर पार नानक। ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी

नानक रत्ना प्रावृति बहुविध अंक प्रकार अस्तपदि कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते

कबहु सद साधक बहु ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग हो दिया, अनक ज्योन परमे परमिया, नाना रूप ज्यों सुहांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे ते वैन चावे, ज्योत पावे सोई होए, नानक दूजा वरन कोय, कबहु सा संगति हु पावे उसे स्थान ते बहर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास उसे स्थान का नहीं विनाश, मान तन नाम रते करंग सदा बस सह पार ब्रह्म कै संग, ज्यों

हर दर गए कहो कैसे गवे। आस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझे ते गाछ होए तब इसको सुख नाही को।

संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की ओ सोजी जाने इत उत की ओह सोजी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जानिया।

कौतम करवाण जो किस करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपाए होवे सोए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना।

हरलो चापुर मान मूरख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार वृत्याग तू तिसे तार जो काश करे सोई सुख मान भूला काहे फिर जान कौन बहुत आई तेरा संग लपट रहे हो रस डोबी पतंग राम नाम जप हिरदय माहे नानक पासे ती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मान लेहो मन बोल राम नाम हिरदय मैं तोल

कह सत बलिहारे चरण साधके तोय तोय पियो अर प्रसाद को अपना जियो साध की धूर कर हो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रास चाखे कोट गही संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जी वालन हार भूखे कौ देवते आधार

सति करनी सचता की रहत सति हृदय सत मुह कहत साचि दृहत साचा अहंकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सरोक रूप नरेख नर अंकेश त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानक अज सोभे सो प्रसान अष्टपदी अविनाशी प्रभ।

नाथ इह तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मन ते कास राख मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन कहो चार कुंठ उठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे।

बृजावस्पति जब कार्य कह न दृह देता पाव पुन तब कहते होता जब धारी अपन संसमाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सो कहो किसे व्याप्त जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस उत परम अपन खेल आवृति जानान करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनि तब बांध मुक्त कहो किस गौ गणी जब एक हरग में अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाय तब सेव सकत कहो कित ठाए जब आपे आपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कद डरे अपन चल ते आप करने हार नानक ठाकुर रग में अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म वरण कहो कहां विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अब गाते घोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त केह पूत लेखा

जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगद।

देखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जस मन बसे सोधन हाल।

तले सुमाय इहते होय सो नाही बुरा उरे कहो कि न कछ करा आप भला कर तू दे की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोता प्रसंग राजता की गत मित कही ना जाए दूसरे होए तसो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान।

जन कह सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साह साह सिमरो गोबिंद माने अंतर की उतर आय तिंद

मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चौ जुगा का हुण नवेड़ा नर मनुखा नु एक निधाना। जत संजम तीर्थ उना जुगा का धर्म है कलम है कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी ते आया हर हर जग ते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चुके मन अभिमाना। कहत सुनत सबे सुख पावे मानत माहे निधाना। बिलरावल महला तीजा। गुरमुख जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सहाए।

जो प्रहलाद हर नाग सिद्र से हो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवना ओ टोवे टोर हाथ चमचम रे हर उदरियो परयो सरना प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करी हो जनन।

से हरख सोगते रहे निरारा जिस ऊपर आप गुरु रखवारा पया वेड़ माया सर्ब पयंगा हाँ मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जा होए कृपाल ता गुरु मिलावे हाँ फिरो दासी मैं करतन दसाया निर्मोल के हीरा मिले ना उपाया हर का मंदर तिस महलाल गुर खोलिया पर्दा देख पई निहाल जिन चाख्या तिस आया साध।

एको रूप सगलो पासारा अपे बन जाप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जब जाइए तत् दृष्टाय रहाओ अन करंग निर्गो निकरंगा आपे जल आप ही तिरंगा आपे ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानके प्रभ सदि मुक्ता बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप।

आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही घट घट आप आलिपनारा आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पांचवा फूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी पई सिमर सिमर विदाता।

आए बसो कर देश में एह पले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बेयोग। बिलावल महला पांजवा काहू संगन चाल ही माया जंजाल उठ सुधारे छतरपत संतन कै ख्याल रहाओ अहम बद को बिनसना एह तुर की ढाल बहजोनी जन में मर है बिखिया बिकराल सत बचन साधु कह नित जप है गोपाल सिमर सिमर।

ताहे पछानो भगत हीन जो प्राणी कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर जह भेद बतावै कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभु के गुण गावै बिलावल अष्टपदिया महला पहला कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख बिरला बुझै कोई बिन पै पै भगत न होई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान त्यान सब गुरते पाई साची रहत सा

अंतर क्रोध पढ़ नाट साला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुख थिया सुकर स्वान गर्दब मंजारा पशु मलेश नी

अर्थ हृदय नाम सदा कीरतार्थ साची दरगह पूछ न होए माने हुक्म सीजे दरसोए सतगुर मिले तै तिसको जाने रहे रजाई हुक्म पछाणे हुक्म पछाण सच्चे दरवास काल विकाल शब्द पै नास रहे अतीत जाने सब तिसका तन मन अर्पै है एहो जिसका ना ओ आवे ना ओ जाए नानक साचे साच समाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठ अभिमान बिन नामे पाज लहग निदान सतगुर सेव नाम बसै मन चीत गुर पेटे हर नाम चितावै बिन नामे होर झूठ परीत रहाओ गुर कहया साकार कमावो शब्द चीन सहज कर।

चल चल सखी हम प्रभु प्रबुद्ध हो, गुण कामण कर हर प्रभ लहिया, भगत बछल उहां को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया, खिमा सिगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस पूक करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया, हर हर सदा सेज बिछाई, प्रभ छोड़ न सके बहुत मन पैया, कहे प्रभ अवर अवर किछ की जय, सब बाद सिगार फोकट फोकटैया, गुर सिगा कियो सिगार मिलन के ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नानक हर हर शरण समैया, बिलावल महला पंजम चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी, ज्यों चात्रिक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया, मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मिले, मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया, वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया, हों खिन पिल रह न सकूं बिन प्रीतम, ज्यों बिन अमले अमली मर गैया, जिनको प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों तिस बिट्टों बल बल कुम गैया, अनेक जन्म के बिछड़े जन्म मेले, जहाँ सत सत सतगुर शरण पवैया, सेज एक एक को प्रभ ठाकुर, महल न पावे मनमुख परमैया, गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन ढील न पैया, कर कर किरिया चार बधाए, मन पखंड कर्म कपट लुभैया, बेसुआ के कर बेटा जन्मया, पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म के भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया, जहाँ हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पेसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिनको ठाकुर कृपा तारी, बहां पकर नानक कड लैया, राग बिलावल महला पंजमा, अष्टपदी कर बारमा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात न कही मेरे प्रभ की, उपमा जात न कही, तज आन शरण गही रहाओ, प्रभ चरण

संसार विख्या कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पूजा प्रभ जी लेहो हर नाम अपना देहो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोग मोहे बादी देहे बिन भजन होवत खे।

जाय हर बिना कतह समाही, गह उठ चित भी नाथ, नानका दे रख हाथ। गुण हर गुण निधे गोपाल, सर्ब कटा परत पाल, मन प्रीत दर्शन प्यास, गोबिंद पूरन आस। एक निमख रहन न जाए, बड़ भाग नानक पाए, प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। ज्यो मीन जल स्यों हेत, अल कमल पिन ना पेत, ज्यो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। ज्यो तरन भगत प्राण, ज्यो लोभिए धन दान, ज्यो दूध जले संजोग, ज्यो महा खुदे आर्थ भोग, ज्यो मात पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन पतंग, ज्यो चोर हिरत निसंग, मैगल है कामे बंद, ज्यो ग्रसत बिखी तंद, ज्यो जुआर बिसन न जाए, हर नानक एहो मन लाए। कुरंक नाद नेहो, चात्रिक चाहत मेहो, जन जीवना सत संग, गोबिंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे, सो सर्व फल हर ले, कुल समूह करत उधार, संसार उतरस पार। हर चरण बहुत ताहे, मिल साध संग जस गाय, हर पैज रखे मुरार। जर नान हर नानक शरण द्वार, बिलावल महला पहला, थिति कर दसवां जात, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एकम एकंकार निराला, अमर अजूनी, जात न जाला, अगम गोचर रूप न रेख्या, खोजत खोजत घट घट देख्या। जो देख दिखावै, तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई। क्या जप जापो बिन जगदीसै, गुर कै शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बादे आवण जाने, क्या ले आव है क्या ले जाहे। सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोई, पखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ बिछोड़। तरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पाओ, जिन किए कर

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करणी साच लिब लाए। सतगुर सेवै से बड़ भागी, होमे मार सच लिब लागी। तेरे रंग राते सहज सुभाए, तू सुख दाता लह मिलाए। एक अस्ते दूजा नाही कोई, गुरमुख बूझै सो जी होए। पंद्रह थिंती तै सत वार, महारुति आवै बार बार। दिन सरैण तिवै संसार, आवा गौण किया करतार। निहचल साच रहा कलतार, नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आद पुरख आपे सृठ साजे, जी जंत माया मोहे पाजे। दूजे पाए परपंच लागे, आवै जावै मरे अपागे। सतगुर भेटें सो जी पाए, परपंच चूकै सच समाए। जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन बसिया प्रभ एक रहाओ। सृष्ट उपाय आपे सब बेखै, कोई न मिटै तेरे लेखै। सिद्ध साधक जे को कहे कहाए, भरमे भूला आवे जाए। सतगुर सेवै सो जन बूजै, होमे मार ता होमे मारे ता दर सूजै। एक ते सब दूजा हुआ, एको वरते अवर न बिया। दूजे तेजे एको जाने, गुर के शब्द हर दर निशाने। सतगुर पेटे ता एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए। जिसदा साहेब डाडा होए, तिसनू मार न साकै कोए। साहेब की सेवक, साहेब की सेवक रहे सरनाई। आपे बक्से दे बड़े आई, तिसते ऊपर नाही कोए। कौन डरे डर किसका हुए, गुरमति शांत वसै शरीर। शब्द चीन फिर लगे ना पीर। आवे ना जाए ना दुख पाए, नामे राते सहज समाए। नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभ सद रहा भरपूर। एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए। एको वरते अवर न कोई, मन रोज कीजै।

मिल संत आए प्रभ त्याए बने अचर जांझियां मिल कतर हुए सहज टोए मन प्रीत उपजी मांझियां मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्रभ कर आयड़ा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत बिछुनिया आनंद अंदन बजे बाजे अहंग मत की मन त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी शांत संग लिब लागी बिलावल महला पंजमा भाग सुलखड़ा हर कंत हमारा राम अनहित बाजितरा तिस तुन दरबारा राम आनंद अंदन बजे बाजे दिन श्रैण उमाहा तै रोग सोग न दुख व्यापै जन्म मरण न ताहा रिद्ध सिद्ध सुधारस अमृत भगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार बंझा पार भ्रम प्राण अधारा सुख सखी सहेलड़ियो मिल मंगल गाव है राम मंतन प्रेम करे तिस प्रभ को राव है राम कर प्रेम राव है तिसे भाव है एक निमक पलक ना त्यागिए गह कंठ लाइए नह ले जाइए चरण रज मन पागिए भगत ठगौरी पाए मोह है अंत कत हुना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म पई एक गुण अबनासी राम कह कर गह पूजा गही कट जम की फांसी राम गह पूजा लीनी दास कीनी अंकुर उदोत जनाया मलन मोह विकार नाठे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक बखाणिए आत्म पसारा करण हारा पर बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जान है जिन हर रस पिया बिलावल महला पंजमा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी बस आओ सखी असी पिरका मंगल गावे तन मान सखी तजमान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन लग चरण शरण दयाल प्रीतम।

जय प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, जय प्रसाद सुगंधत तन लावहे, जय प्रसाद बसे सुख मंदर, जय प्रसाद गृह संग सुख बसना।

0: समाने
1: साधक संग अगोचर मिले
0: साधक संग सदा पर फुले
1: साधक संग आवहे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कत हूं तावे
0: साध संग अस्तित मन पावे
1: साधक संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभ सो परसन
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु कै संग महा पनीत
1: साध संग

0: मंडल
1: कई कोट ससियर सूर्य खेतर
0: कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर
1: सगल समग्री अपने सूत तार
0: नानक जिस पावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस्ताम ससातक
0: कई कोट बेल प्राण सिमरत यार सा

0: संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिग्री एकस काट माहे नौ निध अमृत प्रभ का नाम
1: दे मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद

लाभ लोभ मोहताज भगूते इब तब फिर पछताई एक सरे वै ता गत मत पावे आवन जान रहाई।

असर संगारे ऊचो देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत तै लोए आपे करे कथे सुने सोए। ओहो विदाता तन मन देहे ओहो विदाता मन मुखे सोए। प्रभ जग जीवन अवर न कोई नानक नाम रते पत हुई।

गुरप्रसाद रहे लिव लाई गगन अगम अनाथ अजोनी अस्तर चीत समाध सुगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जोनी गुरमते सारे होरे नाम बिहुनी

साचो पावे गुरु सागर रतने नहीं टूटे लाल पदार्थ साच अखोटे गुर का कहया साकार कमावू गुर के करने का ही ताबू नानक गुरमत सच समावू टूटे ने हो के बुल है सही टूटे बहा दुहू दिस गही

ठाक रहाई महल बलाए ठाक न पाई शब्द सवारी साथ प्यारी साई सुहागन ठाकर तारी डोलत डोलत हे सके फाटे चीर सिंगारे डाह पान तन सुख नहीं बिंडन बिंठी डारे डरप मुई करे अपने डिठी कंत सजाने डर रखे गुरे अपने।

दे आखे सब कोई जै पावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोई टंडोलत टूंडत हौ फिरे टै टै पवन करारे पारे टैते टै पे हौले निकसे पारे अमर अजाची हर मिले तिन कै हऊ बल जाऊ तिन के तूड़ कुलिया संगत मेल मलाऊ मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ जिने नाम दिया तिन सेवसा तिस बलहारे जाऊं जो सारे सूटा हसी तिस बिन अबर न कोई गुर प्रसादी तिस समला ता तन दुख न होई।

खिन मैं टहे उसारे दाना तू बीना तू ही दाना के सिर दान दालद भंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान त्यान तन गया बहु चूरी है मन मैं चीत गवारे तन विरली सच संचया

आपे पचे पचाहे, फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। फाथा चुग चुगे नहीं बूझे, सतगुरु मिले ता आखी सूझे।

कणकणे कर था की सिंगारी मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहारी नानक गुरमुख पाई हर सिंह प्रीत प्यारे हर बिन किन सुख पाया देखो मन बिचारी हर पढ़ना हर बूझना हर सिंह राखो प्यार हर जपिया हर त्याई है हर का नाम आधार लेख ना मिटे हे सके जो लिखिया करतारी आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतारी करते हथ वड्याईया बूझो गुर बिचार लिखिया फिर ना सकिया जो पावे त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख पूले पचमुए उबरे गुर बिचारे उबरे गुर बिचार जो पुरख नदर ना आवी तिसका क्या कर कहे जाई बलहारी गुरे अपने जिन हिरदे दिता दिखाई पादा पड़िया आखिया विद्या बिचरे सह सुबाई विद्या सो दे तत लहे राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बरकदा बिख खटे बिख खाई मूर्ख शब्द ना चीने सूझ बूझ ना काए पादा गुरमुख आखिया चाटरिया मत दे नाम संभाले नाम संग्रह लाहा जग मैं ले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िया शब्द सुसारे नानक सो पढ़िया सो पंडित बिना जिसे राम नाम गलहारे राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकारी सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संदन संत सभा जयकारू तिसे आगे रह रास हमारी साचा अपरा पारू मस्तक काट तरी तिसे आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाईया सहज पाई जस लेओ क्या पविया सच सूचा हुई साच शब्द बिन मुक्त न कोई रहो कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुहाओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कै बैसो कै रही आ बाले कै आवो कै जाहो नानक बोली सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु कट कट बैसे निरंतर रहिया चले सतगुरु पाई सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझे आप पिछाने सच्चे सच समाई दुनिया सागर दत्तर कहिया क्यों कर पाईया पारू चरपट बोले औदू नानक दे सच्चा बिचारू आपे आखे आपे समझे तिसक्या उत्तर दीजे साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजे जैसे जल में कमल निरालम निरालम मुर्गाई स्नौ सैने सूरत शब्द पव सागर तरिया नानक नाम बखाने रहे एकांते को मन वसया आसा मह नरासू अगमा गोचर देख दिखाई नानक तांका दासू सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो सच बिचारू रोस ना कीजे उत्तर दीजे क्यों पाया गुरुद्वारू।

बात खड़ी उंदो पखर पंचपू टोपी काया कड़ासन मन जगोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कवन सुगुप्ता कवन सुमुक्ता कवन सुवंतरे बाहर जुगता कवन सुआवी कवन सुजाए कवन सुतेरे पावन रहा समाए कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सुजुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सच समाए क्यों कर बादा सरपण खादा क्यों कर खोया।

जोगी कहिया सोई अब गतव निर्मायलो उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुरु परते परम पद पाया साचे शब्द समाई लिया एक एक को सच एक का जाने होमे दूजा दूर किया जो सो जोगी गुरु शब्द पछाने अंत

पर गास्थिया जीवित मरे ता सब की सूझै अंतर जाने सर्ब दया नानक ता को मिले वडाई आप पछाने सर्ब जिया साचो उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठौर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दे आपे परखे बख्श लिया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम रसाहीन विसरिया सो बुझे जिसे आप बजाई गुर के शब्द सुमुक्त पया नानक तारे तार नहारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख पूले जम की कान पर कर जोहे हाने हान मनमुख परम पवे बैबान बेमारग मूसे मंत्र मसान शब्द न चीने लवे कबाण नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पाओ पावी गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मले हर गुण गावे गुरमुख पवित्रे परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख साच समावी।

परचा अंतर बिद जाने गुरमुख पाया अलखा पारी नानक गुरमुखे मुक्त द्वारे गुरमुख कथ कथे बिचारे गुरमुख निबहे सर परवार गुरमुख जपिया अंतर प्यारे गुरमुख पाया शब्द अचार गुरमुख पेद जाने जनाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख तरती साचे साजी तिसमें उपद खपत सूबाजी गुर कै शब्द रपे रंग लाए साजे रत्यो पत स्यों कर जाई साज शब्द बिन पत नहीं पावी नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पवजल तरिया सत सुधि गुरमुख सारिया सर्वित जाने गुरमुख परवृत नरवृत पछाने गुरमुख तारी पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निस्तारी नामे राते होमे जाई नाम रते सच रहे समाई नाम रते जोग जुगत बिचारे नाम रते पावे मुख दिवारी नाम रते तिर पवन सोजी होई नाम रते नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए नाम

खाइया सारी जित गर्भ जाए सु कवन आहारे हिवे काकारी मंदर अग्न प्रहान कवन गुफा जित रहे अवाहन इतुत किस को जान समावी कवन त्यान मन मने समावी हाउ हाउ मैं विचू खोवै दूजा मेटे एको होवै जकरड़ा मन मुख गवार शब्द कमाइया खाइया सार अंतर बाहर को जाने नानके अग्न मरे सतगुर कै पाने सच पैराता गर्भ निवारी एको जाता शब्द विचारी शब्द बसे सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिक अग्न निवारी नानक नदरे नदर प्यारी कवन मुख चंद हिवे कर छाया कवन मुख सूरज तपे तपाया कवन मुख काल ज्योत निद रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन ज्योत जो काल संघारी बोले बाणी नानक बिचारी शब्द भगत सच ज्योत अपारा सच कर सूर वसे मिटे अंधियारा सुख दुखे हम कर।

खाई नाम तत् सब ही सिर जापे बिन नामे दुख काल ना काल संतापे तत्तु तत् मिले मन माने दूजा जाए एक तकारे आने बोले पवना गगन गरजै नानक नीचल मिलन सहजे अंतर सुन बाहर सुन तिर पवन सुन मसुन चौथे सुन जो नर जाने ताकू पाप न पुन कट कट सुन का जाने पियो आद पुरख नरंजन देव जो जन नाम नरंजन राता नानक सोई पुरख बिदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन।

मन समझाहे नौ सर सुपर दसमै पूर तै अनद सुन बजावे तूर साचे राचे देख हजूरे कटे कट सच रहा पर पूरे गुप्ते बाणी प्रगट होए नानक परख ले सच सोई सहज पया मिलया सुख होवै गुरमुख जागे नींद न सोवै सुन शब्द अंपर पर तारी कहते मुक्त शब्द निस्तारी गुर की दिखया से सच राते नानक आप गवाई मिलन नहीं प्राती को बुद्ध चवावी को कित ठाई क्यों तत् ना बूझे चोटा खाई जम दर बादे कोई ना राखे बिन शब्दे ना ही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पारे नानक मनमुख ना बुझे गवारे कबुद्ध मिटे गुर शब्द विचार सतगुरु पेटे मोख दवार तत न चिन्हे मनमुख जल जाहे दुरमत विछड़े चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगा पावै मान सच वखर तन पल्लै होए आप तरे तारे पी सोए सहज रता बूझे पत हुए ताकि कीमत करे न कोई जै देखा तै रहा समाई नानक पार परे सच पाए सुशब्द का वास कथियले जे तरिया पाव जल संसारू तैरा सत अंगल वाई कहिया तिस कहो कवन अदारू बोलै खेलै अस्तर होवै क्यों कर अलख लखाई सुन स्वामी सच नानक पर नवै अपने मन समझाई गुरमुख शब्दे सच का लिब लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे पाग समाए सुशब्द क्यों निरंतर वास अलखे जय देखा तै सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तरसोई नदर करे शब्द कट मैं बसे विच्चों परम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु पव सागर तरिया इत उते को जाने चिहन वरन छाया माया नानक शब्द पछाने त्रै साती अंगलवाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोलै तत् बरोलै चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटी शब्द वसाई

पुर साचा सतगुर शब्द समाई मन का जीव पवन कथी अले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कमण औदू सिद्ध की कमण कमाई।

साचे रहे अकाई कवन बेद जित अस्तर रही है किद पोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापी सतगुर ते काल न ग्रासी रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न रखिया शब्द न भाखिया पवन न साध्या सच न राध्या कथ कथा लै सम कर रही तो नानके आत्म राम को लहे गुर प्रसादी रंगे राता अमृत पिया साचे माता गुर विचारी अगन निवारी आप्यो पिए आत्म सुख तारी

के मन का पवना नजर करे ता सतगुरु मेले ता निज घर वासा ए मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाने आत्म जाने क्यों करे क्यों सच कर सूर समावे गुरमुखे होमे विचों खोवे तो नानक सहज समावे ए मन निचल हिरदय वसिया लै गुरमुख मूल पछाण रहे नाभ पवन कर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत् लहे सु शब्द निरंतर निज कर आछा तिर पवन ज्योत छु शब्द लहे खावे दुख पूक साचे की साचे ही तरपतास रहे अनहत बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावे नानके आखी सत सभाखी सच रपै रंग कबहू न जावी जाए से ए हिरदय देह ना होती तो मन कैठे रहता नाभ कमन स्तंभ ना होती ता पवन कमन कर सहता रूप ना हो तो रेख न काई ता का शब्द कहां लिबलाई रक्त बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण पेक असरूप न जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इबदब साचो साचा हिरदा दे ना होती अदू तो मन सुन रहे बैरागी नाभक कमल स्तंभ ना होते ता निज करे बस्त्यो पवन अनरागी

परम कटिया ज्ञान प्राप्त हुई नानक एक नदरी आया जै देखा तै सूई पौड़ी सच्चा तख्त रचाया बैसन को जाई सब किश आपे आप है गुर शब्द सुनाई आपे कुदरत साजियन कर मैल सराई चंद सूरज दुई चानने पूरी बंत बनाई आपे वेखे सुने आप गुर शब्द ते आई

सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ सचन सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो।

श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोका महला नावा। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारथ कीना। कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीना।

बिरद पयो सूजै नहीं काल पहुँचियो आन कहो नानक नर बावरी क्यों ना पजै भगवान तन दादा संपत सगला जिन अपनी कर मान इन मैं कछ संगी नहीं नानक साची जानऊ।

काट काट में हर जू बस संतन कहू पुकार कहो नानक ते भज मना पौ निध उतरै पार।

छाड़त नाहे ना पीता, नर चाहत काछे आओरा, आओरे की आओरे पई, चितवत रहूठ गौरा, नानक फासी गल परी।